0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱད མི Tamang pinsong tsobe rinne da da da ngan zuko megin de la Long chen yin nan zha, nying chen yin nan zha de nang yin ngan zuko kapa de yo chade zamba Tamang pinsong tsobe rinne mangbu je ngan zuko tong yong do go la De yin chade zamba, soju ke rinne de ji, de zang gabo ma je pe je Ding se da so chen bom, dan jo po ma Da dan zhe ke namba de la, pe ha jang gabo dan zhe xien zho go do go la Lo yi sa zong xien ke chen yin na, dan zhe kala zha gwe san zha da Ngan zuko yang gwe su lo chung namba ke, lo yi xie sa zong xie ke de ke rang ma re la ga yin yin nan zha, de ni ngui mi rinne
1: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི 기동가 다든들 이 참아 빼면서 야부 당해서 나 너무 더 토도 다처럼서 나 나기 이 또 뒤야다 그 맥게다 첨보다 던달 말에 조나라 망출로 되긴 종카서서 너무 털려 이렇게 되게 다 코솔로 될 진이 처럼서 나 코스 그 반지 자진 요마로 반지 그 자진 봐 니가 처럼서 나 예말로 야 창도 원 종치 첨보는 그것은 나 굉장히 매바지 내가 코스 그 이 들어서 나 그런 게 인게 답지 레산트 인게 인게 답지 레다 이 몸을 저어다 ते आरों का पाचा चिकित तासों दो ही कांसों ने सुना ऐसे में पे पे रांचों जों मांके लिखे ना जों का जो जो जों लो सके ना जों ये सके ना शैं का सर ओ ते आं दांबे छातों चिकित तंग आ रहे हैं रांच चांदो के जों का जो जो लो ये जो जो जो आरों के ते के तल्ला पेंजो के तल्ला आरों के तंगे रहा आरों के गापु जैसा के लिखा जरा मतलब छो के पेंजो या ना लिखा ले पेंजो मैं तू ना ठेंजे मैं ना लिखा मले तना जैसन रह जो मारो आरों के गापु के लिखा जो ना रान्या के चा ठेंजे तो रोंग ट्रंग जरा ते ये उत्ती चल जुंगा जुजुल ही जुजु जुई सा दिल तुम छमा ला गापु जें दो ते जुंगा जुजु रान्या पा छल छोटा ये रिने छोपी तो जी पा तो पीरे जेजुन को लो पेंडा थु दो सो दा आरों सेन लो बाचा छिहिन रद तेरे ते ना लो चोगे ही द पाचा चिखी द चंदा जिनसन दसों आई मलां द चिन दावा उई को पता ला पशुओं के छांग दोस ने जों ये जों का ये लिखे ना खंबा जंदा सन छरी सांग रो तों वाले जंदा आई भाई सो द अन छावा जो गांस म
0: लासो तुजे छे ते ने गे सन ना ता गन छो गे छे जि च क ले ला योंग के क म जे ने ना खोलन गेन छ क सांग क ना छ गे सारे गे सो ना
1: ने तली ना तो द खले छ भाई लो गागे जरे रोंजे के भाई तो लो गागे जरे पायु तल चदुंग गजरे रण्य के लेखा तल द गाहिं गजरे तचिरे तेन छरेस न रंग मंथो ल खाचु गजरे यिरे ल खाचु गरे सुजे ल खाचु गरे गाये ल खाचु गरे तिरो ल खाचु गरे बा तना जि गसरे संते ग
0: नस गे छेन दाय न त लोमा रे रिच सालिन द तो ने रिनी तो एक न्यान्यो थेने ले न तो ग रिनी जिंजे ता सांजी तेने माउ खेची जेला ते गे से न तंगन छ छ कंदे से ग दो
1: ཁྱི ཕྱད མམ तिरोक थोही दा लातिला देने तेर छरा सुजें के तेर तापी तो जों दा की छम बजे रेसा ते ते तो वाला थोही नोर छ छ सुजें येस न जों वाला देद न ते ते काली काली को जों से छरा स न पंजो खा दा जी ते गन या लुजु रे म को शान ते खा दा ल ते न लुजु रे म ते को छ सा म दो सुजें के तेर तिरो दन जी तो ते न तिरोक थोही दा लातिला देने ते या तापी तो जों दा जों जे जों जो छ बजे रेसा न ते मा छ बा के छरा स न रिने ते दा जी सितु दा सुंदु जे न सिचुग युको ताकि रिने द युको जु सुनरी यापच द तिरो गिनटु द तेन मारन छ सिजे रे छ सिजे द रो तांब जों द छ ग लापा ग जों द छल मातो ब जन द खबर ये जि मिनि सिजे द द खला छ तिरो गिनटु द ते युको गिनटु द ते जोने ग सिचु ल खाचु ग ब जिखल खाचु ग ब ते जांबुली ल खाचु ग ब तना ज रे सं ते द ते द तिरो द माते न छ सिजे द तांब जों द तिरो द दु द माते न द खबर तिरा छ र स न ता युको द खला ना छ मिजि नाके ल युको द ताबदन माउथु गिचरसन छाचें दाजी छुआ दाजी रे दन फिजी तोंज ग चोरा जि रेदो ते व त युकोलो रिने मे दा त कल्लासु मे बताब जुर युको मोज चो द छकिन जि जुं द न चो ग नलो छो ग चन रिने दे मे बा द न युको द तुंबा रे तेरे व त रिने ते चर सुजें ग रिने ते दाजी सिसु द दिरो द तंजे जेन युको त त जे सोंरे आप जे जे ग नो सट तल सोंरे जेन फिजी जि तोना लंगा त या ब जे हि जे रे सं ते दो
0: जेला आं दा बो होंदे से ता त चुं होंदे से ग र बा मुला
2: ཁང་ཅུ་ཕ་ཡི་ལ་གཡེ་ཤེ་ཕ་ཡི་ལ་གཡེ་ཤེ་སན་དེ་ཕ་ཡི་གི་རིན་ནེ་ངོ་ཤེ་པ་ནོ་ངོ་ཤེ་པ་ཤེ་དེ་ནེ་ཁོ་གེ་ནོ་ངོ་ཤེ་ཚ་དེ་ཙམ་ཁོ་པ་ཇུ་དེ་ཤེ་དེ་ཙམ་ཏ་ད་ཏུ་ཚ་ཁ་འདྲེ་ད་ཏེ་ནེ་ཡོ་ཁོ་ལ་སོ་བ་ནེ་དེ་ད་ཡང་དེ་ན་སོ་ན་སོ་ ཁང་གཙང་ཁྱ་ཅ་གི་དང་སོང་ངའི་མལ་ཡི་པ་དེ་ཚན་ན་དེ་ན་ཉི་ང་ག་ཇོ་ཨ་དེན་བི་གཙང་ཁྱ་ཤེ་དེ་མལ་ཅི་ནམ་བི་ཐོ་ནེ་ཡེ་ཚེ་ཟོང་པ་བི་སེན་དེ་ག་ཀེ་ཅ་ད་ལུ་པར་ཇུ་ནི་གེ་ 대게 다위우가 포장포다라 히비 루이디 다시 치민지 도타 포장포다리 기냥디 양다 리리 난도 교디 간기비 센지히 야다 제와 쳔버시 대게 빈치 진루 히바다 포총자 캔도소 루인다다나 뒤최진 준저다 뒤니 머라디 머라바도 주니 사콘예가 리니 다다다 머라예가 辛苦家挣钱的全力月，跟罗在你命运的月呐，罗伊啥种下就呐，杨大大才个这一张明白，爹呐没钱娘用的，没人家挣数，心痛个别，贪婪也厌。空给大多，初二乖乖学学，别家苏记人力家满意点多，爹来家罗杨家娘家随便，空个张去啦。萨空的有的更多认为女爸也顶不消。电脑空格就在讲真不怎么一本，俺做产品参加真的很讲义。电格端的样，俺落在你们录音大机，没那叫参看了，最快的也得心头不当。空格一层呢，如喜马拉雅音一条线，赠送手机精准的一八九十。空格养大呢。杨龙长不一秋叶，端有杂汤个龙不一样。